0: शाम समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग

सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री सरमा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री सरमा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतार कर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1000 लड़कों और 1000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। एनडीए में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय दिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
0: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
6: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
5: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धा

0: श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
1: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
0: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
2: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को हटाने की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमरीकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
3: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने, 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंग, पोकांगवा मेईते, ओइना प्रशांत, हर्षवर्धन जीना देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
0: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 011-23-3104-8, 011-23-71-71-17 और 011-23-71-71-06। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-40-44 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने PM के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिन्दुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई

0: सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार। टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृह मंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चार धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजों में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। गुड मॉर्निंग मुंबई, 8:41 और 11 सेकेंड और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम होगा मस्त मुंबई और दिन है 11 मई 2026 यानी मंडे की ब्राइट मॉर्निंग और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो जान तुम पर ही दिया करते हैं, नाम तुम्हारा ही लिया करते हैं, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो चलिए पहला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं और आपके आने से बाहर आ जाती है।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित।
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीजा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारी डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 8:55 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और मैं आपके साथ आपका आरजे रविन चौहान। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। दिन था 11 मई यानी आज ही का दिन था, साल था 1502 और एक साहसी इंसान, एक यात्री अपनी जिंदगी की आखिरी यात्रा पर निकला था। वो स्पेन से चला था और उसे अमेरिका की तरफ जाना था, लेकिन वो रास्ता भटक गया और उसकी यात्रा ये कुछ खास सफल नहीं रही और इस यात्रा में उसे बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा। और वो अपना एक जहाज लेकर आगे बढ़ रहा था और समुद्र के बीच में फंस गया और उसके बाकी जहाज़ों को बीच में ही रुकना पड़ा था। और वो भारत की खोज के लिए भी पहले निकल चुका था और उसने भारत की खोज की थी 1492 में, लेकिन अब की बार वो गलती से रास्ता भटक कर अमेरिका के द्वीपों की तरफ पहुंच गया। अगर आप जानते हैं कि ये इंसान कौन है तो इसका नाम व्हाट्सएप के जरिए हमें जल्दी से जल्दी बताएं। तो सुनते रहिए FM रेनबो।

0: जाएगी।
1: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, गुड मॉर्निंग एक बार फिर से। हमारे बहुत सारे लिसनर्स अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं और उनके मैसेजेस आ रहे हैं। और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आज ही के दिन एक साहसी इंसान ने, बल्कि कह सकते हैं कि दो साहसी इंसान ने एक यात्रा की थी, और अगर उस यात्री का नाम आप बता सकते हैं तो व्हाट्सएप के ज़रिए हमें जल्दी से जल्दी बताएं, और मैं जिनके जवाब सही होंगे उन सभी श्रोताओं के नाम ऑन एयर लूँगा। तो चलिए अगली चर्चा करते हैं। दोस्तों, 2023 में एक फिल्म आई थी और इस फिल्म को बहुत चर्चा मिली थी। इसका नाम था केरला स्टोरी। इसके सब्जेक्ट को लेकर काफ़ी हंगामा हुआ था, काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, और ये फिल्म बहुत चली थी, बहुत पसंद की गई थी। आज इस फिल्म की नायिका अदा शर्मा, जी हाँ अदा जी का हैप्पी हैप्पी बर्थडे है। 11 मई 1992 को मुंबई में इनका जन्म हुआ था और इनकी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय मुंबई के बेंड्रा में ही बीता है। इन्होंने पढ़ाई तो की है सिर्फ 12वीं क्लास तक, लेकिन साथ ही साथ ये एक जिमनास्ट भी हैं और इन्होंने कथक भी खूब जम के सीखा है। और 16 साल की उम्र में इन्हें फिल्मों में पहला मौका मिल गया था। और 2008 में एक फिल्म आई थी 1920, ये एक हॉरर फिल्म थी और ये इनके करियर की डेब्यू फिल्म थी, लेकिन केरला स्टोरी से ये पूरी दुनिया में छा गई, इनके नाम का डंका बज गया। तो अदा शर्मा जी को हम उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं कि वो इसी तरह नई नई फिल्में करती रहें और लोगों के दिल चुराती रहें। पता नहीं दोस्तों, आज मैं कुछ बहक सा रहा हूँ, ऐसा क्यों हो रहा है मैं भी नहीं जानता, शायद रफ़ी साहब के गानों का जादू है। एनीवे, उनका जादू तो हमेशा सर चढ़कर ही बोलता है। अगला गीत

0: साल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आज किस साहसी इंसान ने एक बहुत बड़ी यात्रा की थी, और हमारे सिर्फ 3-4 लिसनर्स ने ही सही जवाब दिया। और इनके नाम हैं माहिम से दीपा पालकर जी, और अंधेरी से तनुजा शर्मा, और मानखुर्द से प्रकाश शिंदे और प्रणव शिंदे। और इसके अलावा जिन लिसनर्स ने जवाब दिए उन्होंने गलत जवाब दिए। एनीवे, चलता है, फन है, मस्ती है, मज़ा है। और हमारे एक बहुत ही रेगुलर लिसनर हैं प्रकाश शिंदे जी, आज उनका हैप्पी बर्थडे है। तो प्रकाश जी, आपको आपके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमेशा रेडियो से जुड़े रहते हैं और आपके इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि हमारे लिए पढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, और इसी बात पर आप कभी कभी, जी हाँ कभी कभी, नाराज़ भी हो जाते हैं, जैसे कि आप पिछली बार हो गए थे। एनीवे, आप यूं ही ज़िंदगी में खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ते रहें। और कई सारे लिसनर्स ने भी, शायद उन्हें आपकी डेट ऑफ बर्थ पता है, तो आपके लिए संदेश भेजे हैं, तो हम सभी का दिल से, मोहब्बत से शुक्रिया अदा करते हैं। और अगला प्यारा सा गीत रफ़ी साहब की आवाज़ में है, हम आपके लिए प्ले कर रहे हैं, तो सुनते रहिए FM रेनबो।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध शर्तें लागू
1: इंडस्ट्री ट्रेडिंग सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक एनरिचिंग लाइफ।

0: जी हाँ, गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। जी हाँ, हमारे कुछ ही लिसनर्स ने सही जवाब दिया, वो यात्री था क्रिस्टोफर कोलंबस, और 1492 में भारत की खोज के लिए भी निकला था, लेकिन रास्ता भटक कर अमेरिका के द्वीपों की तरफ पहुंच गया था। वैसे जो समुद्र की ये जर्नी होती हैं, यात्राएं होती हैं, ये बहुत ही मुश्किल रही हैं, साहसिक रही हैं, और हर किसी के बस की नहीं होती। हमारे कुछ लिसनर्स ने वास्को डी गामा भी कहा, लेकिन वो गलत है। एनीवे, आज एक क्लासिकल, जी हाँ, मशहूर क्लासिकल डांसर की बर्थ एनिवर्सरी है। इनका नाम है मृणालिनी विक्रम साराभाई। 11 मई 1918 को मद्रास में यानी चेन्नई में इनका जन्म हुआ था, और भरतनाट्यम और कथकली में ये बहुत ट्रेंड हैं, और इन दोनों विधाओं की इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग भी ली। विक्रम साराभाई से इन्होंने शादी की थी, जिन्हें इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए पूरी दुनिया में जाना गया, और मृणालिनी विक्रम साराभाई को डांस की वजह से, उनकी नृत्य कला की वजह से पूरी दुनिया में जाना गया। भारत सरकार ने 1965 में उन्हें पद्मश्री और 1992 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मभूषण से सम्मानित किया था। 2016 में 97 साल की उम्र में अहमदाबाद में मृणालिनी विक्रम साराभाई जी का निधन हो गया था। तो आज उनकी पुण्यतिथि पर हम उन्हें याद करते हैं और कोटि कोटि नमन करते हैं। सुनते रहिए एफएम रेनबो।
1: आपण रोज पाहतो ती सतत धावणारी आणि कधीही न झोपणारी अशी मुंबई। या मुंबईतल्या अनेक ठिकाणांना आपण रोज अक्षरशः धडकत असतो, पण त्यांच्या मागे दडलेल्या अद्भुत गोष्टी आपल्या गावीही नसतात।
2: तुम्हाला माहिती आहे का, जिथे मुंबईचा इतिहास घडला त्या क्षणांची साक्ष देत आजही ही ठिकाणं उभी आहेत। ही आहे अज्ञात मुंबई।
1: म्हणूनच आम्ही ठरवलं मुंबईतल्या या अशा अज्ञात, ऐतिहासिक आणि अनोख्या ठिकाणांच्या मागे दडलेली माहिती तुमच्या समोर आणायची।
2: नितीन साळुंखे यांनी लिहिलेल्या अज्ञात मुंबई या पुस्तकाचं क्रमशः वाचन आम्ही प्रसारित करणार आहोत।
1: तर मित्र हो, हा कार्यक्रम जरूर ऐका। 10 मे पासून सकाळी 8:15 107.1 FM रेनबो वर आणि सकाळी 9 आकाशवाणीच्या अस्मिता वाहिनीवर।
3: Response Digital Banking सेवा आसान और सुरक्षित।
4: इंटरनेट बैंकिंग,
3: मोबाइल बैंकिंग,
4: व्हाट्सएप बैंकिंग,

जी हाँ, गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, 9:52 हो चुके हैं। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मस्त मुंबई और आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है और मैं हूँ आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविंद्र चौहान। और इस गाने को सुनाने का एक खास मतलब था, क्योंकि आज इस यानी ये गाना जिस फिल्म का है उसका नाम है जंजीर, और बच्चन साहब की कह सकते हैं कि पहली सुपर डुपर हिट फिल्म थी। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की, गोल्डन जुबली की, और इस फिल्म के निर्माता निर्देशक थे प्रकाश मेहरा साहब, और अमित जी इस फिल्म से एक स्टार बनकर उभरे थे। यानी आज के दिन इस फिल्म को रिलीज़ हुए पूरे 53 साल हो गए हैं। तो अमित जी को और इस फिल्म की पूरी टीम को हम इस फिल्म के की सफलता के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देते हैं। और ये जानकारी हमें दी हमारे लिसनर प्रकाश शिंदे जी ने। और इस फिल्म से पहले बच्चन साहब को कामयाबी का मुंह देखने का मौका नहीं मिला था। तो सुनते रहिए एफएम रेनबो। अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत, रफ़ी साहब की आवाज़, सिर्फ और सिर्फ बहुत ही खूबसूरत गीत है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। गौर से सुनिएगा, महसूस कीजिएगा, शायद खुदा आसमान से आपको देख रहा है।

आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स। वेलकम बैक मुंबई। 10:56 हो चुके हैं, आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो। ये समय है न्यूज हेडलाइंस का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के अवसर पर आज सोमनाथ अमृत पर्व 2026 में भाग लेंगे। वो भगवान सोमनाथ की पूजा और कुंभ अभिषेक करेंगे तथा बाद में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के एक रोड शो कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए तीनों कुख्यात निशानेबाज हैं। हत्या की साजिश में शामिल लोगों का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नवीनतम शांति प्रस्ताव को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के प्रस्ताव को पूरी तरह से नकार दिया है। आईपीएल क्रिकेट। क्रिकेट में कल रात रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। आज पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस। तो गीत संगीत के दीवानों, एफएम के चाहने वालों, वेलकम बैक। 10:03 हो चुके हैं। आपका अपना चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम होगा नमस्ते भारत, और मैं आपके साथ आपका जिंदा दिल आरजे रविन चौहान। तो चलिए आज राज की बात खुल्लम खुल्ला कह देते हैं।

0: अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
1: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
0: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
1: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

10:24 हो चुके हैं मुंबई सिटी। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्ते भारत। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हमने हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तरक्की करना शुरू कर दिया। लगभग 35 साल पहले की बात करें, यानी 1990 के आसपास का टाइम था, तब बहुत कम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन आज ज़्यादातर घरों में कंप्यूटर है, लैपटॉप है और इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी आज इनका इस्तेमाल अपनी पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए कर रहे हैं। जबकि 25-30 साल पहले मोबाइल का भी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था और आज तो मोबाइल के बिना सब सुना है, मोबाइल के बिना ज़िंदगी चल ही नहीं सकती। और कह सकते हैं कि ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है दोस्तों। आज भारत तकनीक के फील्ड में लगातार आगे बढ़ रहा है। एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि 31 जुलाई 1995 के दिन भारत में पहली बार मोबाइल का इस्तेमाल किया गया था और पश्चिमी बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ज्योति बसु जी ने पहला कॉल किया था और उन्होंने ये कॉल यूनियन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर सुखराम जी को किया था। यानी इस बात को लगभग 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं और हम हिंदुस्तानी अब मोबाइल का इस्तेमाल करने में सिर्फ आगे ही नहीं है, बल्कि आज भारत मोबाइल हैंडसेट का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। वाह, कितनी तरक्की की है हमने। जी हाँ, मोबाइल में तो एक दिन हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया को पीछे छोड़ देंगे। भारत में हर साल 325 मिलियन से ज़्यादा मोबाइल बनाए जाते हैं और ये ग्रोथ स्टोरी इसी तरह चलती रहेगी। मैं तकनीक की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आज एक ख़ास दिन है जिसका ताल्लुक तकनीक से है, टेक्नोलॉजी से है। और अगर आप कुछ समझ गए हैं, आपको मेरा इशारा समझ में आ रहा है, तो आप बताने की कोशिश करें व्हाट्सएप के ज़रिए कि आज भारत में कौन सा डे मनाया जा रहा है, इस दिन का क्या नाम है। तो चलिए अगला गीत, बहुत ही खूबसूरत गीत, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ दोस्तों, आज तकनीक की बात करना बनता है, टेक्नोलॉजी की बात करना आज ज़रूरी है, क्योंकि आज है 11 मई और 11 मई को भारत में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है। और ये दिन हमें एक बहुत बड़ी, जी हाँ, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, उसकी याद दिलाता है। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया था, जिसके बाद भारत को एक परमाणु संपन्न देश माना गया था। ये दिन भारत के वैज्ञानिकों को समर्पित किया जाता है, डेडिकेट किया जाता है। इस परीक्षण के बाद भारत परमाणु हथियार रखने वाला दुनिया का छठे नंबर का देश बन गया था। वैसे ये भारत का पहला नहीं बल्कि दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट था, लेकिन ये न्यूक्लियर टेस्ट कई मायनों में बहुत खास था। इसी की चर्चा करेंगे और हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने सही जवाब दिया है, उनके नाम मैं अगले लिंक में लूँगा।

जी हाँ, गीत संगीत के दीवानों एफएम के चाहने वालों, हमारे जिन लिसनर्स ने सही जवाब दिए हैं उनके नाम मैं बताना चाहता हूँ। अवधेश मौर्य जौनपुर से, राकेश माथुर जी पुणे से, शुभ लक्ष्मी मस्तकार, रजनीकांत पाटिल वढ़ावन, महेश बोरा अजमेर राजस्थान से और लाली झा भी अजमेर राजस्थान से, प्रणव शिंदे प्रकाश शिंदे मानखुर्द से, प्रदीप अनंत कृष्णन जी चेंबूर से, हमारे इन सभी लिसनर्स ने सही जवाब दिया है। आज है नेशनल टेक्नोलॉजी डे और ये क्यों मनाया जा रहा है इसकी चर्चा मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो हमारे साथ इतनी मोहब्बत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ आप जुड़ते हैं, इसके लिए हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपके दिल में जो भी प्यार हमारे लिए है आप हमेशा भेजते रहें और बिल्कुल ना छुपाएं और बिल्कुल ना खुद को रोकें। अगला गीत कुछ ऐसी ही बात कहना चाहता है।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

जी हाँ, मुंबई सिटी 10:50 और 16 सेकंड हो चुके हैं। आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्ते भारत। और वाइंड अप करने से पहले बताना चाहता हूँ कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में किया गया था और इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में किया गया था 11 से 13 मई के बीच में, 5 बार। जी हाँ, 5 बार ये परीक्षण किया गया और इसे पोखरण 2 के नाम से भी जाना जाता है। वैसे इस ऑपरेशन को नाम दिया गया था शक्ति। इस ऑपरेशन के दौरान 5 परमाणु हथियारों का जो परीक्षण किया गया, इसके बाद भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परमाणु शक्ति के रूप में उभर कर सामने आया। उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने इस परीक्षण में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उस समय कलाम साहब प्रधानमंत्री के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे और रक्षा अनुसंधान के प्रमुख भी थे। और इस परीक्षण को कामयाब बनाने के लिए उन्होंने सभी तरह की तकनीकी और वैज्ञानिक जानकारी सरकार को दी थी। और इसके बाद उन्हें हमारे देश का सबसे मशहूर परमाणु वैज्ञानिक भी माना गया। और यह मिशन पूरी तरह से गुप्त रखा गया था और इसी की याद में नेशनल टेक्नोलॉजी डे आज के दिन मनाया जाता है। तो आप सभी को इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम उम्मीद करते हैं कि भारत तकनीक के क्षेत्र में इसी तरह नए नए कदम उठाता रहे, नए नए अनुसंधान करता रहे और नई नई उपलब्धियां हासिल करता रहे। तो सुनते रहिए FM रेनबो। इसी के साथ मैं रविन आपसे विदा लेता हूं। हैव ए नाइस डे। अगला गीत बहुत ही प्यारा गीत सुनिएगा और महसूस कीजिएगा, कुछ आपको छूना चाहता है।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर FM रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की। और समाचार में आगे, रिजर्व बैंक RBI और यूरोपीय केंद्रीय बैंक ECB ने केंद्रीय बैंकिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा और ICB के अध्यक्ष क्रिस्टन लेगार्ड ने बासेल में बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स BIS की बैठक से अलग इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। स्पेन के मैड्रिड में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित क्रूज जहाज पर सवार 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें संक्रमण के कोई लक्षण नहीं हैं। डच ध्वज वाला MV हॉन्डियस जहाज कल स्पेन पहुंचा, जिसमें 2 भारतीयों सहित लगभग 150 लोग सवार थे। और समाचार के अंत में, एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 आज से गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रही है। यह चैंपियनशिप 17 मई को संपन्न होगी। भारत में यह प्रतियोगिता 44 वर्षों के बाद आयोजित की जा रही है। इसमें 28 देशों के लगभग 180 एथलीट भाग लेंगे। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

0: अप
1: वेक अप सिट से सुना आपने ये गाना, और इसे गा रहे थे शंकर महादेवन, लॉय मेंडोसा की आवाजें थी, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हो चुके हैं अगर आप, तो हाजिरी लगाइएगा 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी मंडे कह सकते हैं, अगर मंडे हैप्पी जा रहा है आपका तो। हर मंडे ना हमें लगता है कि अब हम बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं, और वो है भी ना कि मंडे मोटिवेशन वाले कोट्स होते हैं और कितना कुछ, मंडे ब्लूज, मतलब मंडे को इतना ही कोई विलन बना दिया है हमने। हम खुद से प्रॉमिस भी करते हैं कि मैं जल्दी उठूँगा, प्रॉपरली पढ़ाई करूँगा, प्रोक्रास्टिनेशन बंद करूँगा और अपनी लाइफ ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, लेकिन वीक के बीच तक हमारे ज़्यादातर प्लान्स ख़त्म ही हो जाते हैं। तो आज जो है हम बात करने वाले हैं कि वो चीज़ें जो हम हर मंडे खुद से प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन कभी पूरी नहीं कर पाते, ऐसी चीज़ों की बात करेंगे, और ये जो साइकिल है उससे ब्रेक फ्री होने की बात करेंगे। लेकिन ये मंडे की जो भागदौड़ होती है ना, उसके नाम आए अगला ये गाना प्ले करते हैं, भागम भाग का टाइटल ट्रैक, नीरज श्रीधर गाएंगे, सारे मोमिन, आशीष पंडित ने मिलकर इससे लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन।

0: कॉस्मॉस डिजिटल बैंकिंग सेवा, आसान और सुरक्षित
1: इंटरनेट बैंकिंग,
0: मोबाइल बैंकिंग,
1: व्हाट्सएप बैंकिंग,
0: ईकेवाईसी,
1: एनईएफटी, आरटीजीएस,
0: आईएमपीएस,
1: कॉस्मॉस रुपे और वीसा डेबिट कार्ड,
0: यूपीआई जैसे कई सारे डिजिटल सेवाओं का लाभ लेने के लिए आपका अकाउंट कॉस्मॉस बैंक में जरूर होना चाहिए।
1: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।
2: म्यूजिकली योर्स, आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। ब्रेक फ्री ये प्रोग्राम चल रहा है और मंडे की मॉर्निंग आपको हेलो हाय कहने पहुंच गई हूं मैं। और हम बात करें कि किस तरह से हम हर नया वीक जब शुरू होता है तो कई सारी चीज़ें खुद से प्रॉमिस करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा हम प्रोडक्टिव होंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन मिड वीक में ही जो है हम सारे प्लान्स जो है हमारे वो ख़त्म हो जाते हैं। हर मंडे हम प्रोडक्टिविटी के बहुत बड़े प्लान्स बनाते हैं, लॉन्ग स्केड्यूल्स, ऐसे मतलब ह्यूज टू डू लिस्ट्स होती है हमारी और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम एक ही दिन में कम्प्लीटली चेंज भी हो जाएंगे। होता है मतलब इतनी ज़्यादा मंडे मोटिवेशन उभर के निकल के आ रही होती है कि लगता है कर ही लेंगे हम, है ना। लेकिन असली प्रोग्रेस एक दिन में नहीं होती, ये भी सच है। छोटे और कंसिस्टेंटली किए गए एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इसके मुकाबले कि आप एक दिन में ही सारा कुछ काम कर लो कि फिर मुझे जो है हफ्ते भर कोई टेंशन नहीं चाहिए, ये भी सही नहीं है। जिस वक्त जो आपका काम है और जितनी आपकी वर्क टाइम है उतना ही आपने काम करना है, लेकिन उस टाइम के बीच में आपने इस तरह से करना है कि उस दिन का सारा काम कंप्लीट हो जाए। हमने एक बार ब्रेक फ्री में शो किया था ना कि कैसे जो लोग अपना ऑफिस का काम है वो घर लाते हैं या ऑफिस का मूड जो है घर लाते हैं, उससे ब्रेक फ्री होने की भी हमने बात की थी। तो यही चीज़ है, जब आपकी जो आपने तय किया होता है हफ्ते भर में करने की चीज़ें वो नहीं हो पाती है, फिर इस तरह की हड़बड़ी गड़बड़ी मच जाती है। इसके बारे में और बात करेंगे, अभी के लिए रॉकेट सिंह से सुनाते हैं आपको ये गाना। विशाल दद्लानी गाएंगे, जयदीप साहनी ने इसे लिखा, सलीम सुलेमान की कॉम्पोजिशन।

शाहिद चौहान की आवाज रॉक स्टार से सुना आपने ये गाना, या रहमान की कॉम्पोजिशन हवा हवा, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ऐसी तो गर्मी लग रही है बाहर के, क्या कहने। आप ख्याल रखें आप सभी का, और ज्यादा से ज्यादा पानी पिया कीजिए और खुद को हाइड्रेटेड रखें। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। कई सारे लोगों के मैसेजेस आ गए हैं। विजयेंद्र जी अकोला से हमारे साथ जुड़ गए हैं, दादर से बाबा, अशोक पाटिल जी वर्ली से, संजय दर्शन जी, अजय सखरे इंदौर से, शुभ लक्ष्मी जी, प्रणव शिंदे ने मैसेज किया है, वैद ही का मैसेज आ गया है, प्रमोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अकोला से, राजेंद्र पाटिल जी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश माथुर जी ने मैसेज किया है पुणे से, अंजू, डॉक्टर अंजू ने अंधेरी ईस्ट से हमें मैसेज किया।

0: है फिरोज सिगन पूरिया, जिन्हें वॉइस नोट भेजी है जो हम यहाँ पे सुन नहीं सकते, आप लोगों के मैसेजेस आसानी से हम रीड कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ब्रेक फ्री के टॉपिक पे वापस आते हैं। और जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जैसे ही नया वीक शुरू होता है, बहुत ज़्यादा हम मोटिवेटेड फील करते हैं, यू नो, मंडे मोटिवेशन की वजह से। और इतने ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं कि हफ्ते भर का सारा काम जो है वो एक ही दिन में कंप्लीट करके पूरा हफ्ता आ रहा। एक तो ये वादे हमारे, हाँ, ये जो खुद से किए गए वादे, ना पूरे होने वाले वादे। हम ये भी प्रॉमिस करते हैं कि हम अपना बेटर केयर करेंगे, जल्दी सोएंगे, फ़ोन कम यूज़ करेंगे, स्ट्रेस कम लेंगे और हेल्दी हैबिट्स फॉलो करेंगे। लेकिन जैसे ही रूटीन एक बार ब्रेक होती है, हम पूरी तरह गिव अप कर देते हैं, बिना ये सोचे कि अगर एक दिन आपने जो सोचा था उस तरह से, प्लान किया था उस तरह से नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट डे भी आपने जो रूटीन फॉलो करने का सोचा था वो आप करेंगे ही नहीं, है ना। एक फेलियर जो है वो पूरा वीक बुरा है, उसका एग्जाम्पल नहीं होता है। आपने जो है कोशिश करते रहनी चाहिए हर दिन थोड़ा थोड़ा, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं। तो गाना तो अभी है रेडी, लेकिन वक्त हो गया है कि मैं एक छोटा सा स्पॉट प्ले करूं, उसके बाद गाना आएगा आएगा। बस बने रहिएगा आप इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।
1: आकाशवाणी FM रेनबो। अपने व्यापार की प्रगति के लिए और विस्तार के लिए कॉस्मो उद्योग लोन
2: 3 करोड़ तक की आर्थिक सहायता, लघु एवं मध्यम व्यापारियों के लिए कैश क्रेडिट के रूप में लोन उपलब्ध।
1: ये योजना सिर्फ नए ग्राहकों के लिए, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 8.50% से शुरू, शर्तें लागू। आज ही संपर्क करें
2: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

खाकी फिल्म से सुना आपने ये गाना, अर्नब चक्रवर्ती श्रेया घोषाल की आवाज़ें थी और समीर ने इसे लिखा, राम संपत की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। ब्रेक फ्री में हम बात करें कि कैसे मंडे को हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और कई सारे जो है खुद से वादे कर लेते हैं, प्रोमिसज कर लेते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, सारे काम कम्प्लीट कर देंगे वीकेंड से पहले, लेकिन मिड वीक आते आते वो सारे वादे टूट जाते हैं या किसी एक दिन जो है आप जो है अपना टारगेट पूरा करने में असफल हो जाते हैं, तो आप जो है वो अपनी रूटीन ही पूरी त्याग देते हैं कि नहीं अब तो नहीं हो रहा है, अब नहीं होगा। तो ये जो सबसे कॉमन प्रॉमिस हम करते हैं, अब जो वीक में सारे हफ्ते हम वादे करने की बात कर रहे हैं, तो कॉमन प्रॉमिस ये होता है कि इस वीक मैं फाइनली अपनी लाइफ सॉर्ट कर लूँगा कर लूँगी, लेकिन ऑनेस्टली किसी की भी लाइफ कम्प्लीटली सॉर्टेड नहीं होती। तो ये तो मतलब आप खुद पर ही अननेसेसरी का प्रेशर डाल रहे हैं। हर कोई अपनी पेस पर स्ट्रगल कर रहा है और सीख रहा है और फिर से शुरुआत कर रहा है। तो ये जहाँ आप समझ लेंगे कि नहीं कम्प्लीटली सॉर्ट नहीं कर पाएंगे आप लाइफ, तो खैर बहुत बड़ी बात है, ये वीक भी आप कम्प्लीटली जो है वो सॉर्ट नहीं कर पाएंगे। मैं आपको मंडे डीमोटिवेशन दे रही हूँ ऐसा आपको लगेगा, लेकिन ये सच है ना। तो जितना आपको पता है कि आपसे हो पाएगा इस वीक तक, उतना ही आप टारगेट सेट करें खुद के लिए, है ना। तो फिर वो जो ज़्यादा प्रेशर है आप पर, वो वीकेंड तक सारा वो उसका बोझ आप लेकर नहीं चले जाएंगे। जो भी काम है वो वीक में ही अपने निपटा देंगे, अगर आपने तय जो आपने लाइन की है उस टाइम पे आप अपने काम करेंगे, इंस्टेड ऑफ के अपने आप से वादे करते रहें जो पूरे नहीं कर पाएंगे। किशोरदा आशा जी की आवाज़ें, गुलशन बावरा ने से लिखा, आदि बर्मन जी की कॉम्पोजिशन, ये वादा रहा से आ रहा है ये गाना।

0: आपके दिल की हर ख्वाहिश पूरी करने वाली फिक्स डिपॉजिट स्कीम, सुरक्षित बेस्ट इंटरेस्ट रेट और FD के ढेर सारे विकल्प।
1: इंटरेस्ट रेट सर्वसाधारण ग्राहक 7.05%, सीनियर सिटीजन 7.30%, मंथली और क्वार्टरली इंटरेस्ट ऑप्शंस के साथ 16 महीने, शर्तें लागू।
0: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव बैंक, एनरिचिंग लाइफ।

है 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप ब्रेक फ्री इस प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे वीक की शुरुआत में मंडे को हम बड़े ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं और इतनी सारी चीज़ें खुद से जो है हम प्रॉमिस कर लेते हैं, इतने सारे गोल्स सेट कर लेते हैं हम पूरे वीक के लिए कि एक तरह से हमें खुद पर ही प्रेशर आ जाता है। उसके बाद हम मिड वीक में ही सारे जो प्रॉमिसेस किए होते हैं खुद से वो कहीं ना कहीं जो है छोड़ देते हैं। तो इस वीक इम्पॉसिबल प्रॉमिसेस करने के बजाय रियलिस्टिक गोल्स बनाएं, आप छोटी शुरुआत कीजिए, कंसिस्टेंट रहिए और ख़ुद पर इतना स्ट्रिक्ट मत बनिए, ठीक है? क्योंकि शायद ग्रोथ का मतलब हर मंडे अपनी पूरी लाइफ बदल देना नहीं होता, शायद ग्रोथ का मतलब होता है फ्राइडे तक खुद से हार न मानना, है ना? ये अपने आप में ही आपने बहुत बड़ी चीज़ कर लिए। अगर सारे काम आपके नहीं भी निपट रहे हैं फ्राइडे तक, फिर भी जो है एटलीस्ट आपने कोशिश की। और जैसे जैसे आप ये अपनी हैबिट बनाएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो भी आपने मंडे को स्केड्यूल किया था पूरे हफ्ते के लिए वो आप फ्राइडे तक कंप्लीट कर पाएंगे। तो इतना ज़्यादा लोड, इतना ज़्यादा प्रेशर अपने आप पर खुद मत डालिएगा, क्योंकि आप जहाँ काम कर रहे हैं या आपके जो स्कूल कॉलेज है वो तो ऑलरेडी ये आप पर प्रेशर डालने का काम कर ही रहा है ना। आप खुद से जो है थोड़ा सा नर्म रहिएगा। और इसी के साथ ब्रेक फ्री को यहीं रोकने का वक्त हो चला है। आपको बता दें 12 बजे आप न्यूज़ हेडलाइंस सुनेंगे और 12:02 पर म्यूज़िक कैफ़े ओपन हो रहा है, तो बिल्कुल आइएगा। ये बाहर की जो गर्मी है उसे थोड़ी राहत लेने के लिए उस कैफ़े में आए जहाँ पे बहुत ही प्यारे गाने हम आपको सुनाते हैं। और क्या सुनाते हैं, क्या बातें होती है वो उस प्रोग्राम में आपको बताएंगे। अभी के लिए फुकरे फिल्म से आ रहा है ये गाना, कैलाश खेर, कीर्ति सगातिया की आवाजें हैं, मुन्ना धीमन ने इसे लिखा, राम संपत की कॉम्पोजिशन। कर ले जुगाड़, कर ले ढा

क्या बात है, कस्मे वादी का ये टाइटल ट्रैक आपने सुना, किशोर दा लता दीदी की आवाज़ है। गुलशन बाबरा ने इसे लिखा था, आर डी बर्मन की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं

0: स्वानी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज म्यूजिकली योर्स।
1: आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो और समय हो चुका है अब तक के कुछ मुख्य समाचारों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेश मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। श्री मोदी ने वर्क फ्रॉम होम अभ्यास को फिर से लागू करने का भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से खाने के तेल के उपभोग में कमी करने का आग्रह किसानों से भी किया। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। और समाचार में आगे, फुटबॉल में एफसी बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 से हराकर वर्ष 2025-26 का ला लीगा खिताब जीत लिया है। इस जीत के साथ बार्सिलोना रियल मैड्रिड से 14 अंक ऊपर आकर अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है और लगातार दूसरे वर्ष अपना वर्चस्व कायम किया है। और समाचार के अंत में, पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमरीका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। कुछ समय पहले सेंसेक्स 1,089 अंक गिरकर 76,240 पर और निफ्टी 304 अंक गिरकर 23,872 पर पहुंच गया। प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम के लिए बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी पर।

चलते चलते म्यूजिक कैफे तक अगर आप आ ही गए हैं तो अंदर आ जाइएगा, यहाँ बैठें, यहाँ कॉफ़ी के साथ साथ ऐसे ही प्यारे गाने भी सर्व होते हैं और हम आप तक वो कहानियाँ पहुँचाते हैं जो हमारे कैफ़े में आती हैं। ये गाना आपने सुना, शैलेंद्र सिंह, लता दीदी की आवाज़ें थी, अमित खन्ना ने इसको लिखा, बप्पी लहरी की कॉम्पोजिशन, चलते चलते फिल्म से था ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप और आपको वेलकम करते हैं हम म्यूज़िक कैफ़े में, जहां हर चेहरा अपने साथ कोई छोटी सी कहानी लेकर आता है। यहां कॉफी सिर्फ थकान नहीं मिटाती, कभी कभी दिल का शोर भी थोड़ा सा कम कर देती है। तो आइए आज फिर सुनते हैं कुछ ऐसे ही लम्हे जो हमारे कैफे में आए, कुछ देर रुके और बिना कुछ कहे अपनी कहानियां हम तक पहुंचा गए हैं। लेकिन थोड़ा एक और गाना हो जाए ना, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता हल्के हल्के जैसे जैसे कॉफ़ी की महक इस कैफ़े में फैलेगी और जैसे जैसे लोग आते जाएंगे और उनको हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और उनकी कहानी आप तक पहुंचाएंगे। कहीं नहीं जाइएगा, बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज़ वी आर म्यूजिकली योर्स अभी के लिए।

नीरज श्रीधर की आवाज में आपको सुनाते हैं ये गाना, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, विशाल एंड शेखर की कॉम्पोजिशन, हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड से आ रहा है ये गाना, हल्के हल्के।

टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

0: व्यापारियों को आर्थिक सहायता करने वाली कर्ज योजना।
1: कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन इंटरेस्ट रेट सिर्फ 9.25% से शुरू।
0: कैश क्रेडिट या टर्म लोन के स्वरूप में 5 करोड़ रुपए तक लोन उपलब्ध। शर्तें लागू।
1: इंडस्ट्री, ट्रेडिंग, सर्विस इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद कर्ज योजना। कॉस्मोस स्मॉल बिजनेस लोन।
0: कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एनरिचिंग लाइफ।

हाँ जी, अजब लहर है मेरी पड़ोसी। आपने सुना ये गाना ब्रेक के बाद इस फिल्म से, नीरज श्रीधर, शेखर, विशाल की आवाज़ें थी, प्रसून जोशी ने इसे लिखा, विशाल एंड शेखर की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, और म्यूज़िक कैफे ओपन है, जहाँ जैसे कि मैं हर बार कहती हूँ, यहाँ जो कहानियाँ आती हैं उनको हम देखते हैं, वो बिना, मतलब वो कुछ मुझसे डायरेक्टली बात नहीं करती, बस मैं उनको देखती हूँ, वो अपनी कॉफ़ी पीते हैं और जिस तरह के उनके हाव भाव होते हैं या जिस तरह से वो रिएक्ट कर रहे होते हैं, उससे उनकी कहानियाँ समझने की कोशिश करती हूँ और आप सभी तक पहुँचाती हूँ। सो, आज कौन आया है हमारी कैफे में, म्यूजिक कैफे में? आपको बता दें, थोड़ी देर पहले एक लड़का आया था, कानों में ईयरफोन, सामने खुली किताब, लेकिन उसकी नज़रें जो हैं बार बार दरवाजे की तरफ चली जाती थी, जैसे वो पढ़ने नहीं, किसी का इंतज़ार करने आया हो। कभी हल्की सी मुस्कान, कभी गहरी सांस, और कुछ लोग हैं ना, ऐसे होता है ना, सामने नहीं होते, फिर भी पूरा दिन उन्हीं के साथ आपका गुजरता है, उन्हीं के बारे में सोचते हुए गुजरता है। तो अब जिसका भी वो इंतज़ार कर रहा है, वो आएगा नहीं आएगा ये तो पता नहीं, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा है। और अगर जितना देरी होती जाएगी, जितना इंतज़ार ये बढ़ता जाएगा, उतना उतना वो नर्वस फील करेगा, ये तो मुझे पता ही है। लेकिन उस इंतज़ार के नाम जो अभी फ़िलहाल के लिए तो अधूरा है, आए आपको सुनाते हैं ये गाना, जब वी मेट से, उस्ताद राशिद खां की आवाज़ है, इरशाद कामिल ने इसे लिखा, संदेश शांडिल्य की कॉम्पोजिशन, आओगे जब तुम ओ साजना।

वो जो भी था जो नहीं आया, पर मैं आ गई हूँ लौट कर म्यूजिक कैफे में. आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो. शर्मीन संग शामिल हैं आप. म्यूजिक कैफे बिल्कुल ही ओपन है, 12 से 1 बजे तक ही ये कैफे ओपन रहता है. आपने सुना आया ना तू, अर्जुन कानूंगो एंड मोमिना मुस्तसन की आवाज़ें थी. और जैसे कि हम बातें करते हैं, हमारे कैफे में जो आता है और जिस तरह से उनकी

इंतजार कर रहा था और अभी कुछ देर बाद एक लेडी भी आई थी, हाथ में शॉपिंग बैग्स थे, चेहरे पर मुस्कान थी लेकिन आंखें बिल्कुल ही थकन उसमें छुपी हुई थी। वो बैठी हैं, कॉफ़ी का पहला घूंट लिया और कुछ पल के लिए बस ऐसे आंखें बंद कर ली उन्होंने। शायद यू नो बड़े होने का मतलब ही यही होता है कि बाहर से हम बहुत ही ऐसे स्ट्रांग दिखते हैं लेकिन अंदर से बस कहीं ना कहीं हर इंसान सुकून ढूंढना चाहता है और उसी सुकून की तलाश में वो इस कैफ़े में आई हैं, कॉफ़ी पी रही हैं। तो हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं, बस एक गाना लगाते हैं उन सारे साइलेंट फाइटर्स के नाम, ये हौसला। डोर इस फिल्म से आ रहा है ये गाना, शफकत अमानत अली खां एंड सलीम मर्चेंट की आवाज़ें हैं, सलीम सुलेमान की कॉम्पोजिशन।

एमएस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी से सुना आपने ये गाना, अरमान मलिक की आवाज़, मनोज मुंतशिर ने इसे लिखा, अमाल मलिक की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। म्यूज़िक कैफ़े ओपन है जहाँ जो है कॉफ़ी के साथ साथ ऐसे खूबसूरत गाने भी सर्व किए जाते हैं। यहाँ जो लोग आते हैं हम उनकी कहानियाँ आप तक पहुँचाते हैं। तो जी, अभी कुछ देर पहले ही दोस्तों का एक ग्रुप आ गया था, इतनी ज़ोर से सभी हंस रहे थे जैसे दुनिया की सारी परेशानी

निया इस कैफे के बाहर ही छोड़ आए हों। उनकी बातें शायद कुछ खास नहीं थी, लेकिन उनकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। कभी कभी है ना, हैप्पीनेस किसी बड़ी अचीवमेंट से नहीं होता, बस सही लोगों की संगत, सही लोगों के साथ से जो है, ये छोटे छोटे मोमेंट्स भी जो है वो आपको खुशी दे जाते हैं। यही फ्रेंडशिप का मैजिक होता है। और यू नो, उन केयर फ्री दिनों की बात ही कुछ और रहती है ना। बस आपको ऐसा लगता है कि बस अब कॉलेज ख़त्म हो गया, डिग्री मिल गई, हम पूरी जो दुनिया पे है राज करेंगे, हम साथ रहेंगे, बार बार मिलेंगे, लेकिन इसमें से कितनी सारी चीज़ें जो है वो नहीं हो पाती। लेकिन वो जो टाइम होता है ना दोस्तों के साथ का, वो हमेशा याद रहता है। तो उन्हीं बंधु सखाओं के नाम ये अगला गाना, नीरज श्रीधर, कविता सेठ की आवाज़ें हैं, इरशाद कामिल ने से लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन, कॉकटेल फिल्म से आ रहा है ये गाना। बने रहिएगा इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर, बिकॉज वी आर म्यूजिकली योर्स।

कहीं भी जाओ सुनते रहो आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, वो स्टेशन जिसे न सिर्फ लोग सुनते हैं बल्कि उसी की सुनते हैं दिल से दिल तक।

शंकर महादेवन की आवाज प्रसून जोशी ने सर लिखा। शंकर एहसान लॉय की कॉम्पोजिशन लंदन ड्रीम से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल हैं आप और जी म्यूजिक कैफे की एक आखिरी कहानी जाते जाते आपको सुना दें। कैफे के सबसे शांत कोने में एक लड़की बैठी थी। उसके सामने कॉफी ठंडी हो चुकी थी लेकिन वो फिर भी उसे दोनों हाथों से पकड़े बैठी थी। जैसे कुछ चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, कुछ यादें आवाज़ नहीं करती, फिर भी दिल में सबसे ज़्यादा वही सुनाई देती हैं। और ऐसे ही कई सारी कहानियां हमारे कैफ़े में आई, बैठी हैं, कॉफ़ी पी है और हमने उनको ऑब्जर्व किया है और उनकी कहानियां आप तक पहुंचाई हैं। इसी के साथ म्यूज़िक कैफ़े को अब यहीं क्लोज करने का वक्त हो गया है। कुछ कहानियां, कुछ चेहरे और कुछ एहसास जो शायद आपके दिल के भी किसी कोने को छू गए हों, मैं उम्मीद करती हूँ। अब इस कैफ़े में हम फिर मिलेंगे किसी दिन। अभी के लिए तो इस कैफ़े का शटर डाउन करने का वक्त हो चला है। आपको बता दें 1 बजे आप जो है छत्रपति संभाजी नगर से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 1:05 पर आपका अपना चहिता प्रोग्राम जिसमें आपकी रिक्वेस्टें प्ले करते हैं हम, हिट एंड हॉट लेकर हाजिर हो जाऊंगी मैं। एक सवाल आज के लिए भी लेकर आई हूँ, उस सवाल का जवाब देना है और उस जवाब के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देनी है। अभी के लिए म्यूज़िक कैफ़े से जाते जाते आए आपको सुनाते हैं खुदा गवाह से ये गाना। अलका याग्निक, मोहम्मद अजीज की आवाजें हैं, आनंद बख्शी साहब ने से लिखा, लक्ष्मीकांत जी प्यारे लाल जी की कॉम्पोजिशन। तू ना जा मेरे बादशाह, बादशाह शायद चला जाए, मैं एक और घंटा रुकने वाली हूँ। तो आपने भी इसी फ्रीक्वेंसी 107.1 FM रेनबो पर बने रहना है। क्यों? क्योंकि वी आर म्यूजिकली योर्स।

हाँ जी, ये गाना बहुत जल्द हम आपको सुनाएंगे और यही वाला गाना क्यों सुना रहे हैं उसकी भी वजह आपको बताएंगे। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। हिट एंड हॉट लेकर हाजिर हो गई हूँ मैं ये प्रोग्राम जिसमें आपकी पसंद के गाने हम प्ले करते हैं। लेकिन एक सवाल आज आपके लिए लेकर आई हूँ, उस सवाल का आपने जवाब देना है और उस जवाब के साथ ही अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम तक पहुँचानी है, ठीक है? तो आज आपने हमें बताना है, क्योंकि मौसम जिस तरह से हम सब पर अपना असर डाल रहा है, इतनी ज़्यादा गर्मी है। लेकिन क्या हो गया, कल मैंने एक शो देखा, एक ड्रामा देखा, उसके एपिसोड में बता रहा था कि

वो इंसान जो है बिल्कुल ही मतलब बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही होती है वहाँ पे, ठीक है, जिस रीजन में वो होता है, और उसकी गाड़ी के ऊपर इतनी ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है और पूरा वो उलट पुलट चुका होता है, और फिर हेल्प के लिए जब फ़ोन करता है तो कहते हैं कि हम बाकी तरफ भी काम करें, अब थोड़ा सा रुक जाइए, हमें आने में थोड़ा टाइम लगेगा, बस आप हिम्मत रखिए, हम आ रहे हैं। तो उस बीच में वो क्या करता है कि पूरी अपनी माइंड को एक पॉइंट पर लेकर आता है, एक तरफ बस देखते रहता है, और पूरा इस तरह से सोचता है कि ये कोई ठंडी का सीज़न नहीं है, बर्फबारी नहीं हो रही है, गर्मी हो रही है, गर्मी का सीज़न चल रहा है, हर तरफ बहुत ज़्यादा मतलब लोग पसीने में नहा रहे हैं। वो इतना इतना गहरा सोचता है कि जब उसके रेस्क्यू के लिए आते हैं लोग और एम्बुलेंस आती है और उसको फिर वो फॉइल में लपेटते हैं कि इसको ठंड ना लगे, बोल रहे मुझे ठंड नहीं लग रही, मुझे पसीने छूट रहे हैं। मतलब उसके माइंड में वो इस तरह से सोचता है कि उसके आसपास का मौसम पूरा ही बदल गया है। मैंने एक बार कहा भी था कि सारे मौसम जो हैं वो दिल के होते हैं, अगर आपका दिल खुश है तो आपको गर्मी में भी जो है वो ऐसे लगेगा कि ठंडी हवाएं चल रही है ना, और जब आप बिल्कुल ही आपका मूड ही ठीक नहीं है, आपका कुछ मन बिल्कुल उचाट है, तो कितना ही अच्छा मौसम हो आपको अच्छा फील नहीं होगा, ठीक है। तो वो जब मैं सीन देख रही थी मुझे यही लगा कि बिल्कुल ये आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मौसम से रिलेटेड भी है ना, कि अक्सर हम जैसे सोचते हैं, क्योंकि वो कई पूरा एक दिन जो है वो ऐसे पसीने में ही नहा रहा होता है। एक्चुअली वहाँ पे जो है वो दिसंबर का टाइम चल रहा होता है और पूरी बर्फबारी वगैरह हो रही होती है, लेकिन इसका इतना असर उसकी बॉडी पे उसके बाद भी होता है कि वो बस ऐसे ही स्वेटिंग हो रही होती है उसको, तो इतनी हमारे माइंड में पावर होती है। तो मैंने आज जो आपसे पूछना है वो ये कि आपके दिल का अगर मौसम, आज का मौसम का हाल आपको बताना हो, आपके दिल की वेदर रिपोर्ट देनी हो, तो आज आपके दिल का मौसम कैसा है, उसमें धूप है, बारिश है, या तूफान है, या बर्फबारी हो रही है, जो भी आपके दिल का मौसम है मुझे बताइएगा लिखकर, और अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजें। रिक्वेस्ट भेजते वक्त ध्यान रखें कि 70s से लेकर अभी तक के जो नए गाने हैं उसमें से ही कोई गाने आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन का आंसर जरूर देना, ठीक है। 8657661071, 8657661071, 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अभी के लिए आए वो गाना सुना ही देते हैं, शायद माल्या की आवाज़, मौसम फिल्म से आ रहा है ये गाना, इरशाद कामिल ने से लिखा, प्रीतम की कॉम्पोजिशन।

टेंशन के काले बादलों के बीच खुशियों का रेनबो घर सजाना हो तो सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो, म्यूजिकली योर्स।

रेडियो फिल्म से सुना आपने ये गाना, हिमेश रेशमिया की आवाज़ थी, सुब्रत सिन्हा ने इसे लिखा, हिमेश रेशमिया के कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 एफएम रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिडन हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है जिसमें आपकी पसंद के हम गाने प्ले करते हैं। और मैंने आपसे पूछा है कि अगर आज आपके मन का जो हाल है, जो मौसम है, उसकी अगर वेदर रिपोर्ट देनी हो तो आपके दिल का मौसम कैसा है, क्या वहाँ गर्मी है, बारिश है, तूफान है, जिस तरह का भी आपके दिल का मौसम है मुझे लिखकर भेजिएगा और अपने जवाब के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजें। तो ये जो गाना रिक्वेस्ट किया था संजय दर्शन जी ने, वो कहते हैं कि मेरे दिल के मौसम पे तो रेनबो खिला है। ओहो, रेनबो आ गया है इनके दिल के मौसम पे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और अजय सकरे जी ने हमें मैसेज किया है कि आज हमारे जो लिसनर हैं प्रकाश शिंदे जी, उनका बर्थडे है। वाह, हैप्पी बर्थडे प्रकाश जी, मतलब ये हमारे रेगुलर लिसनर हैं, हर शो सुनते हैं और बहुत ही ज़्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है पूरे शो के दौरान, मैसेजेस करते हैं अगर कुछ अच्छा लगे, कोई गाना अच्छा लगे या प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, रेनबो को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू प्रकाश जी। और उनकी भी सॉन्ग रिक्वेस्ट आई हुई है तो आज तो उनकी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले करना बनता है। प्रकाश जी कहते हैं कि यूँ तो मुझे बारिश पसंद है लेकिन गर्मियों की बात हो रही है, नहीं एक्चुअली हम गर्मियों की बात नहीं कर रहे, आपके मन के मौसम की बात कर रहे हैं, क्योंकि आज आपका बर्थडे है तो चले ये समझते हैं कि आपके मन के मौसम में आज थोड़ी ठंडक, इस गर्मी के बावजूद आपके मन में जो है वो ठंडक महसूस हो रही होगी और एक और कुछ हवा के झोंके की तरह ये गाना काम करेगा जब आपकी सॉन्ग रिक्वेस्ट हम प्ले करेंगे। बाकियों के लिए आप भी सवाल का जवाब दीजिएगा, आपके मन का मौसम आज कैसा है, बिल्कुल ही मुझे आपके दिल की मौसम की जानकारी दीजिए और उस जवाब के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। हैप्पी बर्थडे प्रकाश जी, और ये रहा आपका गाना आपके बर्थडे पर आपके लिए, हमारे लिसनर्स की तरफ से, हमारी तरफ से लता दीदी गाएंगी। जानसर अख्तर साहब ने इसे लिखा, खयाम साहब की कॉम्पोजिशन, नूरी फिल्म से आ रहा है ये गाना।

क्या बात है। साजन फिल्म से सुना आपने ये गाना, अलका याग्निक, कुमार सानू की आवाजें, समीर ने इसको लिखा, नदीम श्रवण की कॉम्पोजिशन। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप, हिट एंड हॉट ये प्रोग्राम चल रहा है। आपको बता दें 1:30 बजे आप हमारे न्यूज स्टूडियो से मराठी में समाचार सुन पाएंगे और 1:40 पर हिट एंड हॉट लेकर, आपके गानों की रिक्वेस्ट लेकर और आपके जो जवाब हैं वो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी। ये गाना आपने सुना दीपा पालकर की रिक्वेस्ट पर, जिन्होंने जवाब दिया था मेरे सवाल का कि उनके मन में जो है, मन का मौसम ये है कि बहुत ही ठंडा ठंडा कूल कूल चल रहा है। अरे वाह, अच्छी बात है। वहीं शुभदा हमें लिखती है कि अभी तो ऐसे हालत है जैसे भट्टी में रह रहे हैं। आप शायद बाहर के मौसम की बात करी। मैंने आप लोगों से पूछा है कि अगर आज आपके दिल के मौसम की वेदर रिपोर्ट निकलती तो क्या होती, क्या वहाँ आसमान साफ है, क्या वहाँ गर्मी है, क्या बारिश है या बर्फबारी हो रही है, जो भी है आप मुझे अपना ये सवाल का जवाब दीजिएगा और साथ में अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजिए 8657-661071 पर। 8657-661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। 1:30 बजे न्यूज आएगी, 1:40 पर फिर से हम हिट एंड हॉट लेकर हाजिर हो जाएंगे। अभी के लिए शुभदा की रिक्वेस्ट पर चलते चलते का ये टाइटल ट्रैक, अभिजीत, अलका याग्निक की आवाजें, जावेद अख्तर साहब ने इसे लिखा, जतिन ललित की कॉम्पोजिशन।

आइकॉनिक म्यूजिक, क्या बात है। लता मंगेशकर, उदित नारायण की आवाज़ें, आनंद बख्शी साहब ने से लिखा, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से सुना आपने ये गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो, शर्मीन संग शामिल हैं आप। हिट एंड हॉट लेकर दोबारा हाजिर हो गई हूँ मैं, और मैंने आपसे पूछा है आज हिट एंड हॉट में कि भले ही जो बाहर का मौसम है वो बड़ा ही हॉट है, लेकिन आपके दिल का मौसम हिट है या नहीं, मतलब वहाँ का मौसम का आपने मुझे जो है वेदर रिपोर्ट देनी है कि कैसा है आपके दिल का मौसम। और इसके सवाल के जवाब के साथ अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज देनी थी 8657661071 पर। 8657661071 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। बहुत सारी सॉन्ग रिक्वेस्टें आई हैं, उनके जवाब आए हैं। सो अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो रिक्वेस्ट भेज कर रखिएगा, जवाब भेज कर रखिएगा, अगर वक्त रहा तो ज़रूर हम प्ले करेंगे आपका गाना। हमें महेश बोहरा राजस्थान से लिखते हैं कि FM रेनबो जैसा फ्रेंड साथ हो तो दिल का मौसम और बाहर का मौसम चाहे कैसा भी हो, दिल का मौसम जो है बढ़िया रहता है, सुहाना रहता है, एवर ग्रीन रहता है। ओ हो हो महेश जी। और हमें फिर संदीप जी ने, संदीप मकर, ज्योति मकर ने लिखा है कि

विकी विद्या का वो वाला वीडियो से सुना आपने ये वाला गाना। आप सुन रहे हैं 107.1 FM रेनबो। शर्मीन संग शामिल थे आप। हाँ जी, अब थे कहने का वक्त हो गया है, मेरे जाने का टाइम आ गया है। हिट एंड हॉट इस प्रोग्राम में मैंने आपसे पूछा था कि भले ही बाहर गर्मी है, लेकिन आज अगर आपको अपने दिल की वेदर रिपोर्ट देनी हो तो आपके दिल का मौसम कैसा है। मुझे ये सवाल का जवाब आपने देना था और अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट भेजनी थी। फिरोज सिगनपुरिया जी कहते हैं कि मौसम तो बड़ा सुहाना हो रहा है क्योंकि हम खंडाला में हैं, खंडाला से सुन रहे हैं, तो यहाँ का मौसम अच्छा भी है और आज मौसम बड़ा बेईमान भी है, ऐसा भी कह रहे हैं ये, और सुनना चाह रहे हैं कि वही गाना, आज मौसम बड़ा बेईमान है। हमें छत्तीसगढ़ से प्रिया लिखती हैं कि मौसम बहुत ही मस्ताना हो गया है, यहाँ हवाएं चल रही है और बीच बीच में हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। ये आप अपने दिल के मौसम की बात करिए कि बाहर के मौसम की, क्योंकि हमने आपके दिल के मौसम का हाल पूछा है। कई सारे लोग अभी अभी जुड़ गए हैं, सॉरी आपने देर कर दी है, हमारे साथ जुड़ गए आसाम से हितेंद्र दास जी, और सबके नाम ले लूँ एक बार फिर से, प्रणव शिंदे, फिरोज सिगनपुरिया, अश्विनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, बिवलकर गुलाब गायकवाड़ हमारे साथ जुड़े हुए थे, अहल्या नगर से नितिन स्वामी, दिग्दर्शन और कविता, दीपा पालकर, अभिजीत गवानकर और सरिता गवानकर और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी। शुभदा ने हमें मैसेज किया था, महेश बोहरा, मुकेश कश्यप और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, संदीप कुमार, पंकज मोहड़, पिंटो ने कॉल किया था, बेंजामिन हमारे साथ जुड़े थे काफ़ी टाइम बाद, और हमें मैसेज आया था शरद का, प्रवीण जी का, अशोक पाटिल जी का, और हमें रूपल टेलर ने मैसेज किया।

था प्रकाश शिंदे, हिरमानी वर्मा और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी। हमें मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार सुन रहे थे। राकेश माथुर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, शुभ लक्ष्मी जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और वो कह रही हैं कि मेरे दिल में आज बारिश का मौसम चल रहा है। वाह वाह। अजय सखरे जी इंदौर से जुड़े हुए थे, संजय दर्शन जी ने हमें मैसेज किया था और हमें मैसेज आया था, आया है प्रणय का। वो कह रहे हैं कि वो हुबली जा रहे हैं बेंगलुरु से कार में, फुल एसी में, और बाहर बहुत ही गर्मी चल रही है लेकिन अंदर का मौसम ठंडा है। महर अरोरा ने हमें मैसेज किया था और राम प्रजापति, प्रमोद चिंचोलकर, रजनीकांत पाटिल जी ने, विजेंद्र जी ने अकोला से हमें मैसेज किया था। विजय महोबी और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, श्रेय रावत और उनकी फैमिली हमें सुन रही थी, सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे दादर से, बाबा वैदही, अंजू अंधेरी ईस्ट से, ये सारे लोग आज हमारे साथ जुड़े हुए थे। कई लोगों के जो है सॉन्ग रिक्वेस्ट प्ले हुई, कई की नहीं हो पाई वक्त की कमी के चलते, लेकिन सबके लिए आए ये लास्ट वाला गाना। लास्ट मतलब अगर वक्त रहता है तो एक और आ जाएगा गाना, अभी के लिए तो लोफर फिल्म से आ रहा है ये गाना। रफ़ी साहब की आवाज़, आनंद बख्शी साहब के अल्फाज हैं, लक्ष्मीकांत जी, प्यारे लाल जी की मौसिकी से सजा ये गाना। आज मौसम बड़ा बेईमान है और सच में बेईमान है मौसम। ध्यान रखिए अपना, ढेर सारा पानी पीजिए, खुद को डिहाइड्रेट मत होने दीजिए और सुनते रहें 107.1 FM Rainbow because we are musically yours. जल्द मिलते हैं, अब जा रही है शर्मीन, अपना ख्याल रखें सामीन।

0: scientists, engineers and innovators to India's technological expertise and the launch of India's first indigenous aircraft, Hansa 3. It also memorializes the 6th global nuclear test, demonstrating India's global position. National Technology Day aims to highlight the role of technology in daily life, encouraging youth interest in science and technology. The day also raises awareness about technology's role in addressing societal challenges and improving daily life. As India embraces cutting-edge technologies like AI, biotechnology and quantum computing, the day serves as a reminder of progress and the power of innovation. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
1: Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have extended greetings to scientists, engineers, innovators and researchers of the country on the occasion. India Meteorological Department, IMD, has forecast isolated thunderstorms, lightning and gusty winds over northwest parts of the country till Thursday. Isolated hailstorm activity is also likely to be experienced in Jammu Kashmir, Ladakh, today and tomorrow. The weather agency has said that Himachal Pradesh and Uttarakhand are also expected to experience similar conditions tomorrow. Meanwhile, the Uttarakhand administration has urged the Chardham Yatra pilgrims and tourists to remain cautious and travel safely amid adverse weather conditions in the hill state. An orange alert has been issued by IMD amid the possibility of rainfall and adverse weather in various parts of Uttarakhand, especially in the hilly areas, tomorrow and the day after tomorrow. In IPL cricket, Punjab Kings will face Delhi Capitals at the Himachal Pradesh Cricket Association Stadium in Dharamshala this evening. The match will begin at 7:30 p.m. In football, India will play against hosts China in the crucial quarterfinal match at the AFC Under-17 Women's Asian Cup in Suzhou today. A win will seal India's qualification for the FIFA Under-17 Women's World Cup. Benchmark domestic equity indices continued to trade around 1% down in afternoon session today. The Sensex dropped 796 points to 76,533. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi says Somnath Temple Amrit Mahotsav will inspire country's vision for the next millennia. Performs Mahapuja on completion of 75 years of temple's restoration. West Bengal Chief Minister Shubhendu Adhikari announces transfer of land to BSF for border fencing. Also launches Ayushman Bharat health scheme in the state. Centre notifies implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act to be rolled out from the 1st of July. SBI Research says country's economy remains resilient amid global headwinds, projects growth at 6.6% in the current fiscal. And with that, we end the midday news.
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
3: यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूच

0: पूरे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को जिसे सदियों के कुछ प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
0: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
1: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। देश भर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
0: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
4: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से लें।
5: टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स कॉल टू द नेशन।
1: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने

गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए आईआईटी बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल एएन प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। आईपीएल क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारंभ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

पाए कन्हैया या चीबड़िया ची माया घर मध्य झरनी यही आणी बाणी।

0: Ashwani FM Rainbow 107.1 MHz musically yours.
1: जी 5:02 का वक्त और आप लुत्फंदोज होना शुरू हो चुके हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ और आपने ट्यून किया हुआ है 107.1 FM रेनबो मुंबई। लव यू जिंदगी का हो चला है वक्त, यहाँ जिंदगी से लवरेज बातें, जिंदगी और जिंदा दिली से लवरेज बातें होती हैं। मजरू साहब का एक शेर सुनिए इस मौके की या इस प्रोग्राम के इब्तिदा करने के लिए, बहुत ही शान।

नार शेर है ये। फरमाते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मजरू साहब का ये शेर हमें उम्मीद से लबरेज एक राह दिखाता है। कहता है कि जिंदगी में कभी रुकना नहीं चाहिए और किसी हमसफर का साथ हो या ना हो, आपको बस चलते जाना है। यही चलते जाना ही बेहद ज़रूरी है। जब आप चलना शुरू कर देते हैं तो एक कायनात आपके साथ चली आती है और आपसे जुड़ जाती है, जैसे हम आपसे जुड़ गए हैं। 107.1 FM रेनबो, लव यू जिंदगी का है वक्त, और वक्त है एक बहुत ही खूबसूरत से गाने का। सुनते रहिए, जुड़े रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

5:11 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ। लव यू जिंदगी में, लव यू जिंदगी में, जिंदगी से मोहब्बत करने वाली बातें। जी हाँ, एक मोहब्बत करने वाली बात ये भी है कि आप जिससे मोहब्बत करते हैं उसके लिए आप जब आप एक्स्ट्रा केयर दिखाते हैं ना, तो आपको शायद कहीं ना कहीं खुद से भी मोहब्बत होने लगती है। जब आप उसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं, कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स करते हैं, जैसे उसके लिए कभी कुछ सामान मंगवा दिया या उसे कुछ जो अच्छा लगता है उसे वो खाने को खिला दिया, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जब आप दूसरों के लिए करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप तक लौट कर भी आती हैं। और उस एहसास में न कि केवल उसके लिए करने का एहसास, बल्कि वो एहसास एक ऐसा एहसास के

0: ये शख्स हमारा अपना है और इसके लिए कितना भी हम कर दें वो कम ही है मेरे लिए, और उसकी जो खुशी होती है, जो अंदर ही अंदर खुशी पलती है, उसको बयां करना वाकई में बहुत मुश्किल है। कभी आप भी ऐसा करके देखिएगा, यकीनन आपको बेहद खुशी मिलेगी। फिलहाल तो खुशी आपको इस गाने से भी मिलेगी।
1: ख्वाब ने आंखें खोली हैं, क्या मोड़ आया है कहानी में, वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में।

आन महबूब खान निर्मित दिग्दर्शित पहली टेक्निकलर फिल्म की अनोखी दास्तां मूवी माइलस्टोन्स विद भावना सोमया 1 मार्च 2026 को दोपहर 1 बजे ओनली ऑन FM रेनबो 107.1 FM।

लव यू जिंदगी में लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ, और जिंदगी से लवरेज, जिंदगी से जिंदा दिली से लवरेज कुछ बातें। और एक बात ये भी है कि अगर आप चलना शुरू करते हैं किसी मंजिल की जानिब, मंजिल की ओर, तो राह में कुछ कठिनाइयां भी आती हैं, और इसी से हमारे जिंदा होने का सबूत मिलता है और एक बड़ी मंजिल की तरफ बढ़ने की तस्दीक होती है, उसकी पुष्टि होती है कि हम सही और एक बड़ी मंजिल की अचीवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तभी तो उनमें वैसी रुकावटें आती हैं, और उन रुकावटों से हौसला हार कर हमें बस क्या करना होता है, रुकना नहीं होता है, चलते चले जाना होता है ना, उससे दो दो हाथ करना होता है। और यही चीज़ निरंतर छोटी छोटी मुश्किलों को आप जब छोटे छोटे अंतराल पर हराते रहेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास अपने आप ही उरूज पर होगा, शिखर पर होगा, और फिर आप सारी मुश्किलों को रफ्ता रफ्ता बुलाते चले जाएंगे।

लव यू जिंदगी में लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज़ आदित्य के साथ, और कुछ जिंदगी को बेहतर बनाने वाली बातें उन्हीं में से एक बात ये भी है कि हर इंसान के अंदर ना कोई एक ऐसा हुनर छिपा होता है जिसे अगर वो पहचान ले तो शायद उस हुनर में वो एक बेशकीमती हीरा बन सकता है। कभी कभी जिंदगी की जद्दोजहद हमें उस सोच तक जाने ही नहीं देती, कभी जिम्मेदारी के बोझ तले उस ख्वाहिश को हम दरकिनार कर देते हैं, साइड ऑन कर देते हैं। और लेकिन जब हम उन चीज़ों को जीने के लिए अपने अंदर एक तमन्ना पैदा कर लें और ये जज्बा पैदा कर लें कि हम ये करके रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आप उसके बेहद करीब पहुंच जाएंगे उस ख्वाहिश को जीने के, उस ख्वाहिश को या उस ख्वाहिश के तले कहीं पहुंचने के। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा ठहर कर उस हुनर में अपने आप को ढालने की, उस हुनर को पहचानने की और उस दिशा में आगे बढ़ने की, नज़र को बदलने की बदल कर देखने की ज़रूरत है। और फिर देर नहीं लगेगी कि आप उस विधा के, उस क्षेत्र के, उस रवायत के, उस चीज़ के सबसे माहिरीन आदमी बन जाएं, है ना, होता है ना ऐसा। फिलहाल तो हम आपको सुनाते हैं एक बेहद खूबसूरत सा गाना। आप हमारे साथ ये बढ़िया सा, खूबसूरत सा, लंबा सा सफ़र यूं ही तय करते रहिए और हम भी आपको एक लंबे से सफ़र पर लेकर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पर लेकर चलते हैं।

5:50 का वक्त और बहुत सारे लोग हमारे पास लगातार जुड़े हुए हैं और उनकी मोहब्बतें भी हम तक पहुंच रही हैं व्हाट्सएप के जरिए। अगर आप भी अपनी मोहब्बत हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 8657661071। और किन किन लोगों के मैसेजेस हमारे पास आ गए हैं वो हम बता देते हैं। प्रदीप अनंत कृष्ण साहब का मैसेज हमारे पास आया है और विजेंद्र घोटल जी घटोल जी अकोला से मैसेज करते हैं, आपको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं ऐसा आप लिखते हैं। और वैदेही जी का मैसेज आता है हमारे पास और आप लिखती हैं आपको गाने बहुत पसंद आ रहे हैं, आपने बिल्कुल सही समय से ट्यून किया जी, बहुत शुक्रिया आपका। और आप पूछ रही हैं कि कोई को होस्ट नहीं है जी, को होस्ट तो फिलहाल नहीं है, अभी तो हमसे ही आपको काम चलाना पड़ेगा, हमें ही बर्दाश्त करना पड़ेगा ऐसा कहना चाहिए जी। और भी बहुत सारी बातें लिखी हैं आपने और लॉन्ग ड्राइव गाने के बारे में, अच्छा ओके वो भी गाना आपको पसंद आया। संजय दर्शन जी का मैसेज आ गया है हमारे पास, शाम भी कमाल की होती है, दिन भर की थकान को चुपचाप समेट लेती है, क्या बात है, ऐसा आप लिखना चाह रहे हैं और आपको गाने और प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अशोक पाटिल जी का मैसेज आया हमारे पास और एक शब्द का जिक्र करते हुए आपने कुछ बात लिखी है, डोंट लूज इन एंगर व्हाट यू अर्न बाय स्टेइंग काम, ओके गुस्से में वो सब मत खो देना जो आपने शांत रहकर कमाया है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत सी बात आपने अर्ज की। शुभदा जी का मैसेज भी हमारे पास आ गया है, आपने हमें कॉफ़ी भी भेजी है, बहुत शुक्रिया उसके लिए, उसकी बहुत ज़रूरत भी थी और शाम को सुहाना तो आपने कर दिया है। राजेंद्र परमार जी का मैसेज आ गया है, तहे दिल से स्वागत करते हैं आप जी, हम भी आपका स्वागत इस्तकबाल करते हैं। प्रणव शिंदे साहब का मैसेज भी आया है, आपने नमस्ते बोला है जी, आपको भी नमस्ते, शुभ संध्या। पंकज मोहन जी, रजनीकांत पाटिल साहब, आप सभी के मैसेजेस हमारे पास दर्ज हो चुके हैं। अभी फिलहाल तो इस हसीन से प्रोग्राम को और हसीन बनाते हैं और एक खूबसूरत सा प्रोग्राम तो सुन ही रहे हैं, गाना सुनवाते हैं आपको।

5:56 और देखते देखते 57 मिनट का वक्त हो चला है और एक गाना और कुछ एक आखिरी बात भी हम आपसे अर्ज करेंगे। तो बात यह है कि ज़िंदगी में हम बहुत सारी चीज़ों को रीशेप करने की जद्दोजहद में बहुत सारी चीज़ें ख़राब भी कर देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हर चीज़ हमारे अनुसार, हमारे सोच के अनुसार चले और उसे हम अपनी सोच के अनुसार उस शेप में ढालने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाती हैं, कभी कभी चीज़ें उस शेप में नहीं आ पाती जिसमें आप चाहते हैं। तो कभी कभी होता यूँ है कि उसका जो वास्तविक आकार रहता है वो भी बिगड़ जाता है और वो आपके आकार में भी नहीं रह जाती वो चीज़। तो चाहे वो कोई एहसास हो, कोई ऐसा रिश्ता हो या कोई ऐसी भावना हो, अगर वो आपके अंदर आ रही है ऐसी, तो उसे बहुत ज़्यादा बदलाव करने की कोशिश मत करें, उसके साथ साथ जीने की कोशिश करें। तो हो सकता है कि वो जब आपने अपने वास्तविक स्वरूप में आपको मिले तो वो आपके अंदर कुछ बेहतर कर दे। फिलहाल तो बेहतर हम भी करेंगे आपके साथ एक गाना शेयर करके। बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और वो गाना हमारी फीलिंग बयां करता है आप सबके लिए।

6:16 का वक्त और ये वक्त है अशार की महफिल का। कुछ ऐसे तराने, कुछ ऐसे अशार जो आपके दिल में उतर जाएं। नाज़िश के कुछ अशार हैं और फरमाते हैं कि गीत सुनते हैं कोई दिल को लुभाने वाला, गीत सुनते हैं कोई दिल को लुभाने वाला, नींद ले उड़ा है ख्वाब दिखाने वाला। बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें प्यार किया था हमने, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें प्यार किया था हमने, जिस तरह रंगों से तस्वीर बनाने वाला।

0: 6:33 का वक्त और आप लुत्फंदोज हो रहे हैं अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ अंदाज़े में हमें। मोहब्बत एक ऐसा एहसास, जब मोहब्बत अपने अंदर पलने लगती है तो तमाम सारे एहसास अपने साथ लेकर आती है। कभी परवाना जलता है, कभी पिघलता है, शमा के आगे उसकी अलग अलग वक्त में मुख्तलिफ सी कैफियत होती है। विभा जैन उसको कुछ अशार में बयां करती हैं, फरमाती हैं कि फलक पर चांद जलता है हम उसके साथ चलते हैं, फलक पर चांद जलता है हम उसके साथ चलते हैं, किसी की याद में हम दोनों सारी रात चलते हैं। गजल में आजकल कह देते हैं उनसे हम अपने गम, वगरना खामोशी में घुटके हम चुपजात चलते हैं। हमें फिर याद आते हैं तुम्हारी आंख के सूरज, हमें फिर याद आते हैं तुम्हारी आंख के सूरज, फिर ऐसी आग लगती है सरे पर साथ जलते हैं। छुआ था एक दफा तुमने हमें बातों ही बातों में, छुआ था एक दफा तुमने हमें बातों ही बातों में, हमें छूता है अब कोई तो उसके हाथ चलते हैं।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी

मोहब्बत कभी कभी आपको बहुत सारी सलाहियत भी बख्शता है तो बहुत सारी बंदिशें भी लगाता है। कभी इस जहां में दो मोहब्बत करने वाले मिल जाते हैं और कभी हमेशा के लिए बिछड़ जाते हैं। विशाल बाग साहब अर्ज करते हैं कि उसके कदमों में पड़े चांद सितारे होंगे, जिसने कुछ लम्हे तेरे साथ गुजारे होंगे। उसके कदमों में पड़े चांद सितारे होंगे, जिसने कुछ लम्हे तेरे साथ गुजारे होंगे। आसमां हमको बुलाता है अभी जाने दो, आसमां हमको बुलाता है अभी जाने दो, फिर जमीन पर कभी आए तो तुम्हारे होंगे।

अंदाजे में हमें लुत्फंदोज हो रहे हैं आप अपने दिल की आवाज आदित्य के साथ। अंदाजे में यहां से विदा लेने का वक्त और कुछ विदाई से जुड़े अशआर भी आपके सुपुर्द। फरमाते हैं कि थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, थक गए हो तो थकन छोड़ के जा सकते हो, तुम मुझे वाकईतन छोड़ के जा सकते हो। तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूं, तुमसे बातों में कुछ इस दर्जा मगन होता हूं

7:10 और अब देखते देखते 11 मिनट हो चुके हैं और ये वक्त शुरू हो चुका है हम तुम का, यानी कि हम और आप मिलकर इस प्रोग्राम में चार चांद लगाएंगे, इसको खूबसूरत बनाएंगे और अपनी खूबसूरत बातें एक दूसरे से शेयर करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हम तक पहुंच रही हैं और ये जो बात है वो हम तक पहुंची है। पंकज मोहन साहब का हमारे पास मैसेज आया है और आप अर्ज करते हैं कि आप अमरावती से हमें मैसेज कर रहे हैं और आज FM रेनबो मुंबई के श्रोता प्रकाश शिंदे साहब का भी जन्मदिन है, प्रकाश शिंदे साहब का ही जन्मदिन है और वो आपके दोस्त भी हैं और आप उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। जी, आपकी तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आपने इस दोस्ती को, जिंदा दिली को ताज़ा करते हुए आपने उनके लिए कुछ गाने समर्पित किए हैं। उनमें से एक गाना हमने बहुत खूबसूरत सा क्यों करके रख लिया है और वो आपको सुनाई पड़ना शुरू भी हो चुका होगा।

जी बहुत सारी मोहब्बतें, बहुत सारे मैसेजेस हम तक पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए। और अगर आप भी अपने मैसेजेस, अपनी मोहब्बतें हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं आप, 8657661071, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप कॉल करके अपनी आवाज़ में हमारे पास अपना मैसेज दर्ज कराना चाहते हैं तो 4515-4132 और 33, ये दो नंबर्स हैं। आप इन पर कॉल करके हमको आदेश दे सकते हैं गाना प्ले करने के लिए। फिलहाल तो चलते हैं हम अगले मैसेज की तरफ। और जो अगली फरमाइश आई है वो प्रमोद साहब की आई है। प्रमोद चंचोलकर जी ने हमें बहुत तारीफ भी भेजी है, बहुत शुक्रिया हम करते हैं उनका। और एक बहुत ही खूबसूरत से गाने को सुनने की फरमाइश भी की है। और इस गाने के बाद इस गाने को प्ले करना तो बनता भी है। वो गाना कौन सा है सुन लीजिए आप खुद ही, और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई। हम हैं आदित्य आपके साथ।

0: खुश रहना मेरे
1: यार। इसी एक गाने के दरमियान हमारे पास बहुत सारे नए मैसेजेस आ गए हैं। एक मैसेज हमारे पास ये नंबर से आया है, और क्या आपने अपना नाम नहीं लिखा है? प्लीज़ हमें नंबर अपना नाम लिखकर भेजिए ज़रूर। आपके नंबर में 8350 है लास्ट में। और चेतन कुमार जी का मैसेज हमारे पास आ गया है, वैदेही जी की रिक्वेस्ट, क्या है रिक्वेस्ट, रिमाइंड, ओके, रेनबो रिमाइंड के बारे में आप रिक्वेस्ट करती हैं। जी ज़रूर, हम भी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि अगर शुरू हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। शुभदा जी की कल की फरमाइश हमारे पास आ गई है, और महाराज कीर्तनपुरी साहब का मैसेज भी हमारे पास आ चुका है। और विजेंद्र जी, आप विश करते हैं शिंदे जी को, ओके, आपके विशेष उन तक पहुंच जाएं, और आपका गाना भी हमने देख लिया और वो ज़रूर क्यों करेंगे। और हीरामणि साहब का मैसेज भी हमारे पास इस दरमियान आ चुका है, और आप कई सारे लोग मिलकर एक जगह से मैसेज करते हैं, हीरामणि साहब और पारस मणि साहब, पुष्पेंद्र मणि साहब और नोखे लाल वर्मा जी, आप सभी का मैसेज भेजने के लिए शुक्रिया। और प्रकाश शिंदे साहब का थैंक यू सो मच आ गया है। जी तो अब चलते हैं अगले गाने की तरफ, और अगला गाना जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं वो है फिरोज साहब की फरमाइश का गाना, और बहुत ही खूबसूरत सा गाना है ये, उमड़ा जाओ जान फिल्म से। सुनिए और सुनते रहिए 107.1 FM रेनबो मुंबई।

हर फिल्म की होती है एक कहानी और एक कहानी की भी होती है अपनी ही एक कहानी मूवी माइलस्टोन। हिंदी फिल्म जगत की कुछ अद्वितीय फिल्मों की दास्तां पद्मश्री भावना सोमैया के साथ 15 फरवरी 2026 से हर इतवार दोपहर 1 बजे FM रेनबो 107.1 FM पर मूवी माइलस्टोन।

7:35 का वक्त और ये वक्त है हम तुम का, यानी हमारे और आपके साथ हो जाने का। और ऐसी हमारी विचारधारा से या हमारे विचारों से विचार मिलाते हुए एक मैसेज हमारे पास आया है। मैसेज के साथ साथ फ़ोन कॉल भी आया और बहुत तफसील से, बहुत ही विस्तार से उनसे बात हुई हमारी। हम बात कर रहे हैं संजय दर्शन जी की एक बात, जिनसे हम भी काफ़ी मुतासर हुए और आप लोगों को भी इस बारे में विचार करना चाहिए। और ऐसा हम भी सोचते हैं, लेकिन हम लोग बोलने से बचते हैं ऐसा कि आपको बुरा ना लगे। बात यह है कि कई बार ऐसा होता है कि कई सारे लोग जिनके गाने प्ले हो चुके होते हैं, जैसे आज किसी का गाना प्ले हुआ, तो उसे खुद से ये कोशिश करनी चाहिए कि 3-4 रोज़ अब वो दूसरों को मौका दे कि उनका गाना प्ले हो सके। क्योंकि हम लोग तो रोज़ रोज़ बदलते रहते हैं, आर्टिस्ट तो रोज़ आते हैं, और कल किनका गाना प्ले हुआ था, कल किनका नहीं। तो उस चक्कर में कभी कभी ऐसा होता है कि जिनके गाने प्ले हो रहे होते हैं उनके रोज़ हो जाते हैं, और जिनके कभी नहीं हो रहे होते हैं उनके कभी नहीं हो पाते हैं। तो ये थोड़ी सी समझदारी की उम्मीद हम आपसे करते हैं। और ऐसी बात हमको बताइए संजय दर्शन जी ने, और प्रकाश जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। आप उम्मीद करते हैं इस बात पर आप थोड़ा सा ख्याल करेंगे और इस पर थोड़ा सा अमल में लाएंगे इस बात को। और इसी के साथ हमारे पास एक फ़ोन कॉल के ज़रिए एक गाने की फरमाइश आई। सुनीता जी ने हमें कोलीवाड़ा से फ़ोन करके यार की खबर गाने सुनने की पेशकश की, तो उस गाने को हमने क्यों कर लिया है और बहुत जल्दी आपको वो गाना सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगा।

जी, इसी दरमियान हमारे पास एक फोन कॉल आया तेजस्वी जी का, और आपने बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश की है। हालांकि वक्त बहुत कम बचा है, अब जिनके भी गाने हम तक पहुंच चुके हैं उनके गाने प्ले करने की पूरी कोशिश रहेगी, और अब जो है ना फरमाइशें हैं उन्हें हम आइंदा कभी किसी प्रोग्राम में शामिल करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो बगैर बात के आप सुनिए ये गाना तेजस्वी जी की फरमाइश का।

जी अगली फरमाइश हमारे पास आई है अतेंद्र जी की, और अतेंद्र जी ने बहुत ही खूबसूरत से गाने की फरमाइश की है। आशा भोसले जी की आवाज में गाना है खून भरी मांग फिल्म से, जीने के बहाने लाखों हैं।

अगला मैसेज हमारे पास हरजिंदर सिंह साहब का आया है और आप नथाना पंजाब से मैसेज करते हैं और दो नाम आपने और शामिल किए हैं। हरजिंदर छिंदा आपका ही नाम है और जसवीर, जस्सी, सीता और गीता ये नाम भी शामिल किए हैं। आप संयुक्त रूप से फरमाइश कर रहे हैं और जिस गाने की फरमाइश की आपने वो गाना तो हमें मिल गया है, लेकिन जिस फिल्म का नाम आपने उसके साथ जोड़ा है वो गलत है। तो गाना तो हमने तलाश लिया है, बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है ब्रह्मचारी फिल्म से, आपने मुमताज़ लिखा है, इसको आप दुरुस्त कीजिएगा। और फिलहाल तो हम आपको आपका गाना सुनाते हैं।

7:55 का वक्त, और ये वक्त बताता है कि हमें यहाँ से बहुत जल्दी ही विदा ले लेनी चाहिए। और विदा लें उसके पहले कुछ एक नाम है हमारे पास जिनका शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। विजेंद्र घोटल साहब का मैसेज हमारे पास आया और इनका गाना प्ले भी हो चुका, लेकिन इन्हें लगता है कि शायद नहीं प्ले हुआ और इनका नाम नहीं लिया गया, तो हम उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, और अगर आप नाराज़ हैं तो ये नाराज़ होने का आपका हक़ है। आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उन्हीं से नाराज़ भी होते हैं। तो प्रदीप साहब और फिरोज साहब, एंजेला जी, और इसमें नाम नहीं दर्ज है, दिग्दर्शन कविता जी, शुभदा जी, वैदेही जी, प्रकाश शिंदे साहब, राम प्रजापति साहब, दत्तात्रेय साहब, रजनीकांत साहब, अतीन्द्र साहब, राकेश माथुर साहब, संजय दर्शन जी, मेहर अरोड़ा साहब, दीपाली श्रोतकर जी, बाबा जी, अरविंद कुलकर्णी, चेतन कुमार, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और इसे खूबसूरत बनाने के लिए। और आखिरी एक गाना हम आपको सुनवाते हैं, अजय साकरे जी की फरमाइश का ये गाना है, बहुत ही खूबसूरत सा। इसी गाने के साथ हम आपसे विदा लेंगे, फिर किसी रोज़ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बेहद ख्याल रखिए और FM रेनबो का साथ यूँ ही बनाए रखिए। सुनते रहिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
1: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
0: प्रधानमंत्री ने लोगों से 7 सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। यह जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है।

0: ही है ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पूलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
3: फॉर द सीजन ऑफ खरीफ 2026,
4: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
0: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव

0: ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
1: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
2: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता N. रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2-3 दिन में अधिकतम तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 7 सूत्री को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य

0: सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टरसन के साथ व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आदाब सामेन, एक बार फिर आपका इस्तकबाल है, स्वागत है, खैर मकदम है। आप सुन रहे हैं म्यूजिकली और आकाशवाणी एफएम रेनबो 102.6 दिल से दिल तक। दिल्ली और एनसीआर के अलावा दोस्तों आप हमें अलग अलग जगहों पर और मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर सुन रहे हैं।

अब वक्त हो गया है गजलों के खास प्रोग्राम का, जिसका नाम है रंगे महफिल। और आज रंगे महफिल में आपका साथ निभाने स्टूडियो में हाजिर है आपका दोस्त होस्ट प्रवीण शर्मा। तो कबूल फरमाइए मेरा प्यार भरा आदाब।

0: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल

जवान रात के सीने पे दूधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह। हसीन फूल, हसी पत्तियां, हसी शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाजनी की तरह। फजा में घुल से गए हैं उफक के नरम खतूत, जमी हसीन है ख्वाबों की सरजमी की तरह।

0: फुर्सत के रात दिन।
1: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
4: आज की रात मजा,
3: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
5: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
6: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ये है आकाशवाणी और आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

किसी की चाहत का, जब दोस्तों किसी की चाहत हमारे दिल में बस जाती है तो हम उनके मुरीद बन जाते हैं, और किसी का हसीन चेहरा जब हमारी नजरों में बस जाता है ना तो मन में उसकी चाहत की घंटियां से बज उठती हैं, हमारा रोम रोम उनके हुस्न की बारिश में डूब जाता है दोस्तों, तरबतर हो जाता है, और हम अपने ख्वाबों में ख्यालों में भी सिर्फ और सिर्फ उन्हीं का दीदार करते हैं, उन्हीं की ख्वाहिश करते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल तक।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आप इस वक्त रंगी महफिल की खूबसूरत महफिल में दोस्त प्रवीण शर्मा के साथ और सुन रहे हैं खूबसूरत गजलें। तो लेते रहिए आनंद इन खूबसूरत से गजलों का रंगी महफिल में।

तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। इश्क खता है तो ये खता एक बार नहीं, 100 बार करो।

0: है बब्बल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आप सुन रहे हैं FM रेनबो 102.6, दिल से दिल।

दोस्तों, कभी कभी हम अपने महबूब से अपने दिल की बात नहीं कर पाते या नहीं करते। भले ही हम जुबान से कुछ नहीं बोलते, लेकिन हमारी नज़रें बहुत कुछ बयां कर ही देती हैं।

और सामने वाला हमारे दिल के कैफियत को बखूबी जान जाता है, पहचान जाता है। यही कहा जाए कि वो उससे पूरी तरह वाकिफ हो ही जाता है।

वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, वो चांदनी का बदन खुशबुओं का साया है, बहुत अजीज हमें है मगर पराया है। उतर भी आओ कभी आसमां के जीनों से, तुम्हें खुदा ने हमारे लिए बनाया है।

दोस्तों, हम अपने दिल भर की तारीफ में क्या कुछ नहीं कहते, उनकी तारीफ के कसीदे पढ़ते हैं और उनकी आंखों की जब तारीफ करते हैं तो उनकी झील से नीली आंखों में डूब जाने का हमारा मन भी करता है और फिर हमसे कभी भी दूर नहीं जाता।

जहां न तेरी महक उधर न जाऊं मैं, जहां न तेरी महक उधर न जाऊं मैं, मेरा मिजाज सफर है गुजर न जाऊं मैं, मेरे बदन में खुले जंगलों की मिट्टी है, मुझे संभाल के रखना बिखर न जाऊं मैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री ओल्फर क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्व शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल रहेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया है। ईडी गिरफ्तार पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की शहरी बेरोजगारी दर इस वर्ष की जनवरी से मार्च तिमाही में घटकर 6.6% हो गई। इससे पिछली तिमाही में ये दर 6.7% थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान का नवीनतम प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यात्रा के दौरान व्यापार वार्ताओं में भी तेजी आने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर 5 विकेट पर 210 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर 211 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, स्टूडियो की घड़ी में समय हो रहा है रात्रि के 12:05:56 और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जीरो आर शो का। तो इस शो में मैं आज आपके साथ रहूंगी, आपकी साथी अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। कहिए साथियों, कैसे हैं आप? मैं लेकर आई हूँ ये कुछ खूबसूरत से गीतों की माला आपके लिए। आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, माँ का खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती। सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये है भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में, हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम जीरो आर शो। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि का 1 बजने जा रहा है। अब समाचार होंगे, बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत

नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में कई केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल होंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी। यात्रा के दौरान व्यापार वार्ताओं में भी तेजी आने की उम्मीद है। इस बीच श्री ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध विराम बेहद कमजोर स्थिति में है। व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि ईरान की ओर से भेजा गया नवीनतम प्रस्ताव पूरी तरह अस्वीकार्य है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया है। पंजाब किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 210 रन बनाए। दिल्ली कैपिटल्स ने 19 ओवर में 211 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, समय हो रहा है स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 1:05 और 55 सेकंड्स और आपको इंतजार होगा कार्यक्रम सुहानी रात का। तो लीजिए सुनते हैं ये कुछ गीत जो अपने वक्त के बहुत ही यादगार रहे। कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ अलमास रजा। आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।

से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेंबो पर रात 9 बजे।

0: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली NCR, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
2: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
1: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
3: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है,
4: ठीक है।
3: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
2: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
1: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
5: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
1: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
2: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल।

0: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
1: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
0: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
1: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
0: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपना का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे।

प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति की भी समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समावेशी विकास सुनिश्चित करने पर जोर दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने नागरिकों और विदेशी नागरिकों से कानून का सम्मान करने की अपील की है। उन्होंने ये अपील ऐसे समय की है जब सरकार अवैध प्रवासन को रोकने के प्रयास तेज कर रही है। अपने साप्ताहिक समाचार पत्र में रामाफोसा ने देश के कुछ हिस्सों में विदेशी नागरिकों को निशाना बनाकर किए गए हालिया हिंसक प्रदर्शनों और आपराधिक घटनाओं की निंदा की। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: जी हाँ साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय हो रहा है रात्रि के 2:05:53। और लीजिए अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने। इसके अंतर्गत आप सुनेंगे नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक और मैं रहूंगी अलमास रजा आप सभी श्रोताओं के साथ। आपको मेरा नमस्कार।

0: है।
1: हिमालय की गोद से लेकर
2: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
1: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
2: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
1: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
2: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
1: तो सुनना ना भूलें
2: रेनबो डेस्टिनेशंस
1: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
3: दिल के तराने, गाने नए पुराने, नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
4: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
5: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
6: आज की रात मजा,
5: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
7: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
1: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
8: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

श्रोता सुन रहे हैं कार्यक्रम भुलाए ना बने और मैं हूँ आपके साथ अरमास रजा। 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM रेनबो।

आईना बने ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे थे। इसके साथ ही ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि का 3 बजने जा रहा है, कुछ ही पलों में अब आप समाचार सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपना आने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया है। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ किस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगसामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार

कार्यकाल के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच जम्मू कश्मीर से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में राज्य का दर्जा बहाल करने, कार्य संचालन नियम, आरक्षण व्यवस्था में संतुलन और जनहित से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया गया। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 1-2 दिन में वर्षा हो सकती है। दिल्ली में आज बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: वाणी आकाशवाणी।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर और आज मैं आपकी दोस्त और होस्ट दीक्षा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस वक्त रात के 3 बज रहे हैं और अब वक्त है हमारे कार्यक्रम मिडनाइट मेलोडीज का। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की फिल्म दबंग के गीत के साथ।

0: अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे। रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात। रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
1: तुमसा कोई दूसरा इस जमीन पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का।

0: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
1: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
2: आज की रात मजा,
1: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
0: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
4: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
0: म्यूजिक मस्ती।

राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा। संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती।

समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संघर्ष को इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से ऊर्जा सहयोग सहित क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे और वहां किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मुलाकात करेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। असम में आज हिमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ बुधवार को लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। सुजीत बसु पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। ईडी पूर्व मंत्री को आज अदालत में पेश करेगी। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तेल बाजार में उथल पुथल और कूटनीतिक तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच लागू युद्ध विराम बेहद मुश्किल स्थिति में है, जिससे स्थायी शांति की उम्मीदों पर फिर सवाल खड़े हो गए हैं। इससे पहले ईरान ने अमरीका के शांति प्रस्तावों पर अपनी प्रतिक्रिया भेजी थी। ईरान ने सभी मोर्चों पर संघर्ष समाप्त करने, अमरीकी प्रतिबंध हटाने, ईरानी संपत्तियों को जारी करने और हॉर्मुज जल मध्य के प्रबंधन में ईरान की भूमिका को मान्यता देने की मांग की थी।

राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान की शर्तों को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया है, जिसके बाद अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखी गई। ब्रेंट क्रूड का दाम $105 प्रति बैरल के पार पहुंच गया। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हरा दिया। 211 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 216 रन बनाकर मैच जीत लिया। आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर और इस वक्त प्रातः के 4:05 हुए हैं और साथ ही हुए हैं 50 सेकंड। अब वक्त है हमारे कार्यक्रम सारे गम का। तो श्रोताओं, गीत सुनवाने से पहले मैं अपने सभी लिसनर्स को अ वेरी गुड मॉर्निंग कहना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि उन सभी का आज का दिन जो हो वो शुभ हो। तो चलिए श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारे इस कार्यक्रम की जिसमें आप सुनेंगे नॉन स्टॉप गीत। शुरुआत करते हैं फिल्म कृष से।

अतीत से, बातें बस दिल से, क्योंकि आपकी याद आती रही। रेनबो पर रात 9 बजे।

मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

0: कहानियाँ हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: हिमालय की गोद से लेकर
3: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
2: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
3: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
2: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
3: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
2: तो सुनना ना भूलें
3: रेनबो डेस्टिनेशंस
2: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।